0: ऐसे बाटे ला ता जिक से यूं रोया लो या यूं अ तेज़ा में बने ता तंदे ती रिंधान ती आ हा को बा अंग काशिन ये बे तिंडे जी गुरिम जी गुई ओर बा ता जिक किरांग के तंदे शे साब से बे गुरिम ना लो ले या शे साब तें से की केजू रो जी आ कंजे जी ले या जुगु ना
1: लेसे ता तिंडे से ना चला सोसो के सो यूं रिंने के रिंधान दा में बे शा बे चला तो ये के रिंधान हा को बने चे जी ता तिंग सा शे खारे सुने ले ता शे दी नंबर दी सुजुरिंग सुजुरिंग यार आये रे जा यं तभी युगों तक जे सुजुरिंग रोयां दी कंजेस शे दी नलो लोग तो नंजो सुजुरिंग रोयां दी नंबर कंजेस थों दी मिशन बेल पार नंबर चोग तो ओ दी रे जा दी सोंजा नंजो थालो रारे थालो रां नंजो तंदर कबरानी दी चुंगा कलु नंजो की कलु कलु की शब्दों रां सोया की शेरान सोया की बाबजान सोया की दिस छोड़ खूब छो दिन रात की बच्ची यानी अन्य खलू ही माचा शन नगना जो कि तभी तो सुजुरिंग ना हो बेटे केंच बस ये ना जी ये ना चाह दे रहे तभी मैंने ही माचा शन नगना जो बेटे तेरे वाला खलू दिने नगना जो कि जम्मे लिंबु यंचिंग लासोबो के दिन जी चोना जी मशु दिन का शब्द जब चुन सम्बा नगना जो नम यू की शेष शब्द ना लोगे ना शुभ चिंबु ता अंजे में दूसरा बा नंबर साब जी कंजे सो तो ओ अंदे से जे थलू में खलू की शेष सो यूल ओ अंदे से रह दिन ने की माँ चिंजे ता दिन सां की शेष सो है कब जो ता ता शेष सो बे केजु रो जी शेष तंजो गांव लो केजु रो दी चाह दे यूल लेंगे बिच चाह शन ले से रह ता नम जुंग अंजो की चोबु चोबु जुंग जुंग दू जंबा शेष दान दू जाम ये दान ये जा की ता दान ये जा गांव लो शेष सो बे शेष दान चो मो रिं जी का ना मी गांव लो दान शे बे शेष दान रोयां डिक्सो शेबे गिरिम नालो कांगो चुन चुजी नालो रोयां ना सार्सो मुंग डिस छेको तो सुदु जंबा नेंग ने शेन केसी शेदे नालो देंके की चीसी जुयो बा देंके की शे दाने जुयो ना नार सोसो की सार्सो मुंग की सम्गी क्याकों दी चुंग शेना जुगे ओ तो सुरे जा ता बे शाशा ना गांजो दिले शेजी पयु शिगजी की शेजी ओया ता पयु शिगजी नालो सुसु लाजो के ने छु के शे ता बे पयु शिग तो नलो जाना सिले जे जिजे मजे जिक थो जि ना कर कर कर जिक थों जि थें जो ओ जे जे जिक कोर जंग शे जो जिक शे जो रे ता दे केसे पयु शि मे जिक मिने दु सम बा ओ शे एन जे दु सम सा रो जि मे शि के शे दे ते बे के छोन ना दा नो ओ जे ले मा रे ता ये शे दी खा जा रा ला पयु शि जे शे दी गो ने गुब तु की बाब जा रंग के जांग मा शे जे शे से मे बा शे दान दान ने मे ना ta di nalo zham nye zi nye zhado, ma zu gi xi xi zi nye zhado, lingbu zi nye gi zhadang bi zi tuan da zamba di nalo, o, na nga ma puyu di du zima nye du nye xa su, koro so so rang nye ge, chona da le de gilwa, ma zu li bi nalo la, di tong yung zima, nga me nye zi di ge, o di zi du zamba, ta xie di, xie di rang la de be, ta be cha xa na gang zu gi, di da zi bi zi gyan li, xie puyu zi nye xie jing mu xio yo ma, yi nye le, xie nye nye ju nalo la, sa lu ma zha ju da, सुसु लिबे नलो खुर्योगी माजा जु थोंयोरो ओन देस रेसा सेसा खबरन निदा सेसोय खबरो दो जोदिनि जादान रान जांगमा छेजे सेसि मेबा सेतानि मेबे छेजेगी सेसोयादि ओन देस दिने जोजिदि सुगुर यादि नलो लुया ओदिनि